0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
5: पर कॉल

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल जो ज़्यादा पूछने को मिलता है हमें, वो ये होता है कि जी अगर कोई शख्स आपके खिलाफ या किसी में, हमसे कॉलर है, पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जी चो खबर है को कम जना
1: जी, ये खुदा ने जी मास्टर सबीर खबर को
0: जी जी जी मास्टर सब चलेंगे खैर दा
1: जी खैर है अल्हम्दुलिल्लाह भाई सवाल में जी को बोला
0: जी जी जी वायो
1: अगर मिसाल हुआ इस पर हुआ जी मोर अपलार जल्दी भी
0: ठीक सलाम
1: मोर अपलार उस तो बे मोके वाले भी तो बिल से किसी को मुझे मसाई पच्ची में उनको जिला दाम के पेटा सुबह
0: ठीक दा
1: और देखो कि रोड पे दुकान वाला इजाफी किया ना गरीब होने का नौकर पेशा ना रहता ना नौकर नौकर पेशा नीचे कर माल होता रहता
0: जी जी
1: जवाब
0: हमारे साथ भाई थे, उनका सवाल ये है कि अगर कोई माँ बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के दरमियान अपनी जायदाद तकसीम करके चले जाए या तकसीम करना चाहते हैं या तकसीम कर दिए। अब इनका ये इशू था कि एक माँ बाप हैं, उनके 6 बेटे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे बेटों के दरमियान बराबर बराबर ज़मीन तकसीम कर दी है, अपनी जायदाद तकसीम कर दी है। उसमें से एक बेटा ऐसा है जो माली लिहाज से थोड़ा कमज़ोर था, उसकी नौकरी वगैरह नहीं थी, तो माँ बाप ने उसको थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा दिया और ज़्यादा हिस्से में उसको एक दुकान एक्स्ट्रा दे दी, यानी एक इजाफी दुकान उसके नाम पे कर दी। 6 बहन भाइयों में से जो एक भाई था उसको एक दुकान एक्स्ट्रा दे दी माँ बाप ने कि जी ये तुम्हारे हिस्से से ज़्यादा इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप गरीब हैं या आप इस्तेआत में कमज़ोर हैं, आप माली लिहाज से कमज़ोर हैं। तो अब क्या माँ बाप के मरने के बाद बाकी भाई उठ के दावा कर सकते हैं कि जी ये इस दुकान में भी हमारा हिस्सा है? तो क्या ऐसा अमल किया जाए जिससे माँ बाप के मरने के बाद बाकी भाई जो हैं वो दावा ना करें? बुनियादी उसूल पहले समझें। बुनियादी उसूल कानून का जो है वो है विरासत, और कानून की ये मंशा है, शरीयत की ये मंशा है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद को खुद इस्तेमाल करे और मरने के बाद छोड़ दे उसको विरासत के मुताबिक तकसीम होने के लिए। यानी जब वो मर जाएगा तो उसके बाद जितनी जिसकी विरासत बनेगी शरीयत के लिहाज से वो उसको मिल जाएगी। ये शरीयत भी इस चीज़ को इंडोर्स करती है, कानून भी इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में तकसीम न करें, आप छोड़ जाएँ, आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे खुद उसको ले लेंगे। लेकिन साथ ही साथ कानून आपको मुकम्मल इख्तियार देता है कि आप अपनी जमीन को अपनी जिंदगी में जिस तरह मर्जी चाहे बांट दें, फरोख्त कर दें, किसी को हिब्बा कर दें। यह कानून ने आपको इख्तियार दिया हुआ है कि अगर एक शख्स है वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के दरमियान तकसीम करना चाहता है तो वो बिल्कुल कानूनन जायज है, उसमें कोई नाजायज बात नहीं है। अब सवाल जो है वो ये है कि वो तकसीम कैसे की जाए कि माँ बाप के मरने के बाद उसको कोई चैलेंज ना करे अदालत में, उसको कैसे किया जाए, किस तरह से लिखा जाए, स्टैम्प पेपर काफी होगा या सिर्फ एक सफेद पेपर होगा, उसकी रजिस्ट्री करवाई जाए ना करवाई जाए। तो ये अहम सवाल ये है जिसका जवाब मैं आपको देता चलूं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप के मरने के बाद आपका कोई दूसरा भाई उठ के आपके खिलाफ मुकदमा ना करे, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपकी वो जो दुकान है उसकी रजिस्ट्री अपने वालिद और वालदा से अपने नाम पे मुंतकिल करवाएं, उसकी रजिस्ट्री करवाएं और उस रजिस्ट्री में 2 भाइयों को बतौरे गवाह डालें। और गवाह सिर्फ स्टाम्प पेपर नहीं होता, स्टाम्प पेपर लिख के उसके ऊपर वो दोनों भाई आपके गवाह होंगे, फिर उस स्टाम्प पेपर को आप ले जाएं रजिस्ट्रार के, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर, वहां पे जाके उस दुकान की बकायदा अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाएं और वहां सब रजिस्ट्रार के जो रजिस्टर है उसमें भी भाइयों का नाम बतौर गवाह दर्ज करवाएं। जब ये सारा अमल आप कर लेंगे تو پھر اگر آپ کے بھائی کل کلاں اٹھتے ہیں اور عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ انتہائی کمزور ہوگا، آپ کا دعویٰ انتہائی مضبوط ہوگا، عدالت جو ہے وہ دکان آپ کو ہی دے گی۔ اگر آپ کے بھائی گواہ نہیں بنتے تو پھر بھی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ کسی بھی شخص کو گواہ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی دو شخص گواہ ہوں اس اسٹامپ پیپر پہ، اور اس اسٹامپ پیپر کی بنیاد پہ آپ نے جا کے آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں سب رجسٹرار دفتر جائیں گی اگر ان دونوں کے نام پہ وہ دکان ہے۔ اگر صرف والد کے نام پہ ہے تو والد جائے گا وہاں پہ رجسٹرار آفس میں جا کے وہ انگوٹھے لگائے گا، دستخط کرے گا، وہاں پہ اس کا بیان لیا جائے گا کہ ہاں میں نے یہ اپنی مرضی سے، اپنی بالکل کسی کی بھی مجبوری میں نہیں، بالکل خوشی سے میں نے یہ دکان جو ہے اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دی ہے، اپنے اس بیٹے کو دے دی ہے۔ تو اگر آپ ایسا رجسٹری کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ صرف سادہ اسٹامپ پیپر لکھ لینا یہ کافی عمل نہیں ہے، اور اگر صرف سادہ آپ نے اسٹامپ پیپر لکھ لیا ہے تو کل کلاں اگر آپ کے بھائی انکاری ہو گئے اور انہوں نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا تو اس کے قوی تر امکانات ہیں کہ عدالت اس دکان کو وراثت میں چھ بھائیوں میں تقسیم کر دے گی۔ تو بہتر آپشن یہ ہے کہ اگر انتقالی زمین ہے انتقال کروائیں، اگر رجسٹری والی زمین ہے تو رجسٹری اپنے نام پہ منتقل کروائیں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر کل کل آپ کے لیے مسئلے ضرور بن سکتے ہیں۔

0: हेलो हेलो। अच्छा, तो अब जो पहला सवाल तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि जी अगर आपके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे किए जा रहे हैं, FIR की जा रही हैं, तो आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं, आप माली नुकसान वसूल कर सकते हैं उस शख्स से जो आपके खिलाफ ये तमाम तर मुकदमाबाजी कर रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ मुसलसल तोहीन आमेज, इज्जत के आपकी इज्जत को मजरू करने के मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक पे पोस्ट्स कर रहा है, स्पीचेस कर रहा है, आपको आपके खिलाफ अखबार में कुछ लिख रहा है, बुनियाद बोगस, तो फिर क्या किया जाए, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, तो इस पे क्या किया जाए कि अगर कोई शख्स जो है वो आपके खिलाफ मुसलसल जो है वो जबान दराजी कर रहा है, मुसलसल आपको आपकी तोहीन कर रहा है, आप पे झूठे इल्जामात लगा रहा है, वीडियो के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए, मैसेजेस के जरिए या किसी भी और जरिए से वो आपको बेइज्जती पहुंचा रहा है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या किया जाए? तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई शख्स बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, आपको लगता है कि वो जो शख्स आपके खिलाफ इल्जामात लगा रहा है उसके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकते हैं और अच्छे खासी रकम आप उससे वसूल कर सकते हैं। कानून जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे इसका इख्तियार देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
1: दो करनाला
0: जी जी वो चाहता सो प्लार वो दापता सो प्लार जका मुंतकिल कड़े वो जमुन पर नाम बांधे।
1: आओ जी आओ जी
0: शादा जो जवाब दरकम जी। ये भाई साहब का सवाल ये था कि दो कनाल जमीन थी जो कि हमारे भाई बाप ने खरीदी थी। उन दो कनाल में से चार भाई हैं, एक कनाल एक भाई के नाम पे है और एक कनाल बाकी दो भाइयों के नाम पे है। खरीदी बाप ने थी, बाप की जायदाद थी, लेकिन उसने खरीदते वक्त अपने बेटों के नाम पे उसके इंतकालात करवा दी। ये बड़ा संगीन मसला है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब वो मुश्तरका होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं एक ही जगह पे, यानी तीन भाई इधर हैं, दो भाई सऊदी अरब में बाप के साथ काम कर रहे हैं, तो जो सऊदी अरब में दुबई में काम कर रहे हैं वहां से पैसे भेज रहे होते हैं कि जी जमीन खरीद लो, यहाँ जो पाकिस्तान में मौजूद भाई होते हैं वो जमीन अराजी वगैरह खरीद के उनको अपने नाम मुंतकिल करते चले जाते हैं। अब असल में वो मुश्तरका जायदाद होती है, उसमें सबका हिस्सा होता है, बाप की कमाई से वो कमाई गई होती है। या ऐसा भी होता है, हमने देखा है, हमारे सामने ऐसे मसले भी आते हैं कि बाप सऊदीया में कमा रहा है, वहां उसके यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे हैं, तो वो रकम भेजता रहता है, तो यहाँ जो बड़ा बेटा होता है वो चूंकि बाकी छोटे हैं तो बड़ा बेटा सारी जायदाद संभाल रहा होता है, तो वो जमीनें खरीदता जाता है, अपने नाम पे मुंतकिल करता चला जाता है। तो बाद में जब बाप की वफात हो जाती है या बाज़ दफा बाप की जिंदगी में जब जायदाद की तकसीम की बात आती है, तो वो जो जिसके नाम पे होती है वो कहता है ये तो जमीन मेरी है, ये तो मैंने खरीदी है, ये तो मेरे नाम पे है, तो इस पे बहुत सारे तनाजे जन्म ले लेते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये ख्याल करना चाहिए कि जब भी जो शख्स जमीन खरीद रहा है, जो पैसे दे रहा है, उसको अपने नाम पे ही मुंतकिल करवानी चाहिए, ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर ऐसा ऐसी कोई सूरत हो जाती है जिस तरह इनका मसला है, तो इसमें ये भाई मिलके दावा दायर कर सकते हैं उस भाई के खिलाफ जो उस जायदाद का हिस्सा दे नहीं रहा, उसके खिलाफ दावा दायर करेंगे, उस इंतकाल को चैलेंज करेंगे और उसमें ये वाजे लिखेंगे उस दावे में कि जी ये जो जायदाद है ये हमारे बाप के पैसों से खरीदी गई है और विरासत में इसमें हमारा हिस्सा बनता है। चूंकि ये हमारे भाई बड़े थे या जी इनके पास वाक इख्तियार मौजूद था, तो हमारा बाप इनको पैसे देता था, इनको कि आप खरीदें, वो खरीद के बाप के नाम पे नहीं करते थे, अपने नाम पे मुंतकिल कर दिया करते थे, जिसकी वजह से ये सारी जो जमीनें हैं ये इन्हीं के नाम पड़ी हुई हैं। हम भी इस शख्स की औलाद में से हैं, हमारा इसमें हिस्सा बनता है, तो हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। अगर अदालत में आप ये चीज साबित कर पाते हैं कि वो तमाम तर जो अराजियात हैं या जो दो कनाल जमीन है वो आपके बाप के पैसों से खरीदी गई है, आपके भाइयों के पैसों से नहीं खरीदी गई, ये चीज आप साबित कर देते हैं, तो अदालत विरासत में आपको आपका हिस्सा दिलवा सकती है और उस इंतकाल को खत्म करके आपका भी उसमें विरासती इंतकाल करवा के हिस्सा दे सकती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल मुकदमा होता है, इसमें आपको साबित करना पड़ता है, जबानी कलामी नहीं कि आप कहें कि मेरे बाप की जमीन थी इन भाइयों के नाम पे, जबानी कलामी ये बात नहीं चलेगी। जबानी कलामी इसलिए नहीं चलती कि कल कला फिर कोई भी उठ जाएगा, आपने खुद एक घर खरीदा होगा, आपका भाई उठ जाएगा, वो कहेगा ये घर जो है ये हमारे बाप ने खरीदा था, इसने नहीं खरीदा, तो इससे तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर आप साबित कर सकते हैं, आपके पास ठोस सबूत मौजूद है, या आपका वालिद साहब खुद जिंदा है, वो आके अदालत में गवाही देता है कि मैं मजदूरी करता था, मैं कमाता था और मेरे कमाए हुए पैसों से ये तमाम तरह रजियात खरीदी गई हैं, तो फिर तो वो अदालत जो है उसको कंसिडर करती है बाज दफा, अदरवाइज अदालत जो है वो आपकी बात नहीं मानेगी। अगर सिर्फ वो जबानी कलामी होगी, उसके साथ कोई सबूत नहीं होगा, उसके साथ कोई ठोस सबूत नहीं होगा, तो ऐसी बात जो है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। अच्छा, तो अपने प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करूंगा अपने उस टॉपिक पे जिसको मैंने आगाज किया, और वो था आज का हर्जाने का, हद तक इज्जत का दावा, हर्जाने का दावा, ये दोनों तकरीबन सेम दावे होते हैं। हद तक इज्जत का दावा तब किया जाता है जब किसी ने आपकी इज्जत मजरू की हो, किसी ने आपके झूठे इल्जामात लगाए हों, आपके खिलाफ जबान दराजी की हो और उसको वो साबित ना कर सकता हो, जिससे आपकी इज्जत माशरे में मजरू हुई हो, आपको नुकसान हुआ हो, लोग आपको बुरा भला कह रहे हो, लोगों के दरमियान आपका उठना बैठना मुतासर हुआ हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ आप बिल्कुल जो हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं, 1 करोड़ का 2 करोड़ का 3 करोड़ का जितनी आपकी इज्जत मजरूह हुई है उसके मुताबिक। और दूसरी जो बात थी वो इम्पोर्टेंट ये थी कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमाबाजी की जा रही है तो वहाँ पे आप हर्जाने का दावा वहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो झूठी मुकदमाबाजी आपके खिलाफ की गई, जो नुकसान आपको पहुँचाया गया, जो नुकसान आपको पहुँचाने की कोशिश की गई, वो तमाम तर जो आपको नुकसान हुआ है उसके इवज आप अदालत से रुजू करके माली मुआवनत हासिल कर सकते हैं। और अदालत जो है वो पाबंद जिम्मेदार है कि वो अगर आप ये सब कुछ साबित कर पाते हैं तो अदालत जो है वो आपके दादरसी करे, आपको उसकी कंपनसेशन अदा करे, और उस शख्स जिसने ये काम किया, और ये ज़रूरी भी है ताकि आइंदा के लिए ऐसे शख्स जो है, ऐसे लोग जो हैं वो इससे बच के रहें, इससे वो ख्याल करें, किसी के खिलाफ वो इस तरह की मुकदमाबाजी न करें। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अमल है कि आपने इस चीज़ को जो है वो करना है, इस चीज़ को ऐसे छोड़ना नहीं है। अगर जहाँ कभी भी आपको सामना हो झूठी मुकदमाबाजी का, तो वो कभी भी आपने उसको ऐसे जाने नहीं देना। मेरे पास 3-4 और सवाल आ गए हैं, मैंने वो पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं उनका जवाब अभी इसलिए भी नहीं देता कि हमारा टाइम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और हम ये काफ़ी डिटेल्ड जवाब है इनका, मैं सरसरी आपको बताऊंगा तो समझ भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला इन सवालात को मैंने पेंडिंग रखा है, आपको मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इतवार को दिन 12 से 1 बजे तक जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन सवालात के जवाब दूँ और आपको मुतमईन करूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि अपनी ज़ाती अनाएँ, अपनी ज़ाती रंजिशों को ख़त्म करके इस माशरे को बेहतर बनाने में हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे अगले इतवार को दिन 12 से 1 तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।

तेरे हैं। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम मोहेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वो ही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

मैसेज कवल वाले सिफर 342 311 बाईस बहन में सिफर 342 311 बाईस बहन में मैं ताजो माता मैसेज कवल है शेखा।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the good listeners of Global FM 91, Dil Khan, Radio Begum 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4. आप तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज और ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है किसन की, ये आवाज है खलील ताबिश आवाज की। जी जनाब, सुपैर के 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही जनाब आपको ये आवाज सुनाई देती है तीनों रेडियो स्टेशन से बराह रास्त बयक वक्त बराह रास्त पूरा एक घंटा जनाब केसन के नाम होता है। पहाड़पुर से मैं डेयर अजमल खान और चांद के गिर्द नवा में रहने वाले तमाम लोग, गांव बस्ती इलाकों में जितने लोग रहते हैं, सभी इस आवाज को सुनते हैं और ना सिर्फ इस आवाज को सुनते हैं बल्कि इस

आवाज को सुनने के बाद इस आवाज की सच्चाई को पहचानते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन में केसन को हिस्सा बनाते हैं। केसन नेचुरल पाकिस्तान की प्रोडक्ट को अपनी रूटीन, अपनी डे टाइम रूटीन का, अपनी नाइट टाइम रूटीन का, अपनी हेल्थ रूटीन का हिस्सा बनाते हैं और फिर वो फायदे हासिल करते हैं, जो दिली रिजल्ट होते हैं, यानी कि डिजायर रिजल्ट, जो आप कोई चीज खरीदते हैं और उस खरीदने के बाद आपके जहन के अंदर जो ड्रीम आता है, ख्वाब आता है, ये प्रोडक्ट आपको इतना ही फायदा देगी। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी प्रोडक्ट यानी केसन नेचुरल पाकिस्तान की प्रोडक्ट आपको उतना ही खुश करती हैं, आपके दिल को उतना ही खुश रखती हैं और आपके दिमाग को उतना ही सेटिस्फाइड करती हैं कि जितना आपने इससे उम्मीद लगाई होती है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से, जो केसन नेचुरल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि नेचुरल और प्योर इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट हमने आपको देने हैं। और जब किसी चीज के अंदर प्योरिटी आ जाती है, खालिसपन आ जाता है, तो रिजल्ट खुद ब

जनाब, हर रोज इसी पैगाम के साथ आप लोगों के साथ होते हैं जनाब। और केएसएन नेशनल पाकिस्तान का मैसेज, केएसएन नेशनल पाकिस्तान का पैगाम आप तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर सुनते हैं बयक वक्त। और बात हमेशा आप लोगों के साथ जो होती है वो पॉजिटिविटी की होती है जनाब, पॉजिटिव मैनर्स की, अपने आदत को बेहतर करने की, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफस्टाइल में जब आप अपनी दिमाग जो है आपके पास, जो कि आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है जनाब, इसको पॉजिटिव वे के ऊपर जब आप रखते हैं और हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं जनाब, पॉजिटिविटी को अपनाते हैं, तो डेफिनेटली जनाब ढेर सारी कामयाबियां आपके मुंतजर होते हैं। कहते हैं जनाब कि अगर आपका जिंदगी के अंदर कोई दुश्मन नहीं है, ऐसे सोचने की बात है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई दुश्मन होना जरूरी है या यानी कि बेहतर इंसान कौन है कि जिसके दुश्मन है, या बेहतर इंसान वो है जिसका के कोई दुश्मन नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? क्या इस दुनिया के अंदर आपके दुश्मन होने चाहिए या दुश्मन नहीं होने चाहिए? जी जनाब, जाहिर बात है जवाब आपने सोच लिया होगा। तो इसका असल जवाब ये है कि जनाब अगर आपके दुश्मन नहीं है, अगर आपके आसपास कोई आपके मुखालफत करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उन मौकों के ऊपर भी खामोश रहे हैं जहां आपको बोलना चाहिए था, यानी कि कुछ गलत हो रहा था आप नहीं बोले हैं। ठीक है जनाब, आपने गलत को भी गलत होने दिया और अच्छे को भी अच्छा होने दिया। अगर आपने गलत को गलत कहा होता तो कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास जो गैदरिंग लोगों की है वो 1000 लोगों की है या 2000 लोगों की है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपका एक दो दुश्मन जरूर होता। और दुश्मन ना होने का मकसद यही होता है कि आप उन लोग उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां पर आपको बोलना चाहिए, और ये बहुत ही गलत बात है। जहां पर हक सच की बात हो वहां पर आपको बोलना चाहिए, जरूर आपको बोलना चाहिए। क्योंकि जनाब हदीस पाक मौजूद है कि सबसे पहले तो आप गलत काम को रोकें जो बुरा काम हो रहा है अगर आपके पास ताकत है, अगर नहीं तो क्या कहते हैं कि अपनी सोच से उसे बुरा कहें, अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें, अगर नहीं तो आखिरी दर्जा जो ये है कि कम से कम आप उस चीज को दिल ही दिल में जरूर बुरा कहें।

लेकिन अब केसर नेस्ट पाकिस्तान के ढेर सारे प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास मौजूद हैं और हमें खुशी होती है जब आपकी स्किन केयर रूटीन के अंदर आप जो भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी नीड फेस वॉश है तो आप केसर का खरीद रहे होते हैं। और ये मैं इसलिए आज कह रहा हूँ कि आज हमारा विजिट जो है वो पहाड़पुर साइड की तरफ था और वहां पर मैं अक्सर एक दुकान का नाम उठाता रहता हूँ जनाब, बहुत बड़ा, वहां पर उन्होंने केसर नेचुरल पाकिस्तान को 4 से 5 शेल्फ जो है ना वो केसर को दिए हुए हैं। इतनी ज्यादा डिमांड है केसर की। लोगों ने मेरी एक टिकटॉक देखी होगी जो मैंने इससे पहले लगाई थी, उसी दुकान की मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी और मैंने लिखा हुआ था कि इतनी सी जगह लेने के लिए ना किसी भी दुकान के ऊपर सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी जगह यूं समझ ले 4 फुट की जगह किसी दुकान के ऊपर अपने नाम करने से, वैसे तो हम प्लाट खरीदते हैं अपने नाम हो जाता है ना, लेकिन किसी दुकान के ऊपर जब आप 4x4 की जगह खरीदते हैं ना 16 फुट की या 10 फुट की जगह, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है जनाब, ये एक कंपनी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक दुकानदार अपनी दुकान का 10 फुट या कह सकते हैं कि जनाब 8 फुट का 6 फुट की जगह जो है वो आपके नाम कर देता है, यानी कि केसन को दे देते हैं, तो केसन का वो रकबा हो गया और केसन के प्रोडक्ट वहां पर नजर आते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ हसीब जनरल स्टोर जो है जो रंगपुर में, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, मुखालफीन की दुश्मनों की नजर भी बहुत ज्यादा हमें लग जाती है बाज़ुकात, तो अल्लाह ताला से हमेशा दुश्मनों की पनाह चाहनी चाहिए और बद नजरों से और हसद करने वालों से भी अल्लाह ताला की पनाह हमें चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला से ही हम जो है दुआगो हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ आज वहां पर मौजूद था, तो 2 फीमेल आती हैं जनाब हसीब जन स्टोर के ऊपर और आते वो कहती हैं केसन की ज़ाफ़रानी क्रीम है, तो हसीब भाई उन्हें उठा के देते हैं, फिर वो कहती हैं मिल्की सोप जी उठा के देती हैं, फिर वो कहते हैं केसन का ऑयल, तो वो हसीब मेरे साथ देख मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं कि भाई ये कोई दीवाना है केसन का, जो कि 3 प्रोडक्ट उसने उस जुबान से जो निकले हैं ना 3 प्रोडक्ट वो केसन के। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी लवली फेस वॉश शॉर्ट था, फिर उन्होंने कहा कि ब्यूटी स्प्रे शॉर्ट था, ठीक है जनाब, फिर उन्होंने कहा कि चलो वो दें गो पिंपल, वो उनको वहां से मिल गया, फिर उन्होंने ऑयल मांगा। तो यानी 8-10 चीजें मैं वहां पर बैठा हुआ था और दिल में बड़ी खुशी भी हो रही थी कि यार एक कस्टमर जो घर से निकला है अल्हम्दुलिल्लाह, मिल्की सोप भी उन्होंने लिया है। इस वक्त शायद वो बहन हमें सुन रही हो और उस वक्त वो मुझे नहीं पहचान सकी होंगी कि ये भी एक कंपनी का ऑनर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उनके सामने वो सारी चीजें रखी उन्होंने। और एक अजीब खुशी होती है कि भाई जो सामान खरीदना चाह रहा है वो भी केसन का, जो फेस वॉश खरीदना चाह रहा है वो भी केसन का, जो ऑयल खरीदना चाह रहा है वो भी केसन का। अच्छा जी, वेट कम पेट कम भी साथ में थी, भूल गया मैं, वेट कम पेट कम, ठीक है जनाब, वो भी साथ में थी। और क्रीम की बारी आई नाइट क्रीम, तो वो भी केसन की नाइट क्रीम, ठीक है जनाब, फेस वॉश की बारी आई तो वो भी केसन का फेस वॉश। तो इतने सारी प्रोडक्ट जब हमने बनाई ना, बाद लोग कहते हैं इतने प्रोडक्ट आप लोगों ने बना दिए हैं क्या कोई खरीदता भी है, तो भाई खरीदता क्या है, एक एक बंदा 10-10 प्रोडक्ट लेके जाता है केसन के अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक बंदा जो घर का बंदा होता है, यानी कि हो सकता है ये मुख्तलिफ किस्म के घर के अंदर जो है हमारा प्रोग्राम सुना जाता रहो, कोई सोप को पसंद करता है, कोई फेस वॉश को पसंद करता है, कोई ऑयल को, किसी को वेट कम पेट कम चाहिए। सो जनाब, अब बहुत खुशी होती है जब लोगों को हम देखते हैं, डेफिनेटली उसमें हमारी मेहनत है, हमारी कंपनी का किरदार है, लेकिन मैं एक आज आप लोगों से माजरत चाहूंगा, क्योंकि प्रोडक्शन मेरे जिम्मे जो होता है वो कमर्शियल प्रोग्राम करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताने होते हैं और मेरी आवाज़ आप सुनकर बाजार जाते हैं, लेकिन बाज़ुकात जो है शॉर्टेज हो जाती है। अब जो शॉर्टेज का मसला है ना, शॉर्टेज का मसला, प्रोडक्शन का जो मसला है वो मेरे साथ रिलेट नहीं करता, ठीक है जना, मेरा काम होता है प्रोग्राम करना, आप लोगों को प्रोडक्ट की इफादियत बताना, और ये जो काम मैनेजमेंट है ना प्रोडक्ट का शॉर्ट हो जाना, ये मेरे जिम्मे नहीं है। ये जनाब उसामा साहब है हमारी कंपनी में, ठीक है जनाब, जो कि स्टॉक के स्टोर को देखते हैं कि भाई अब हमारे पास कौन सी चीज कितनी पड़ी है और अगले दिनों में हमें कितनी बना लेनी चाहिए ताकि ये वक्त मुकर्रर के ऊपर हमारे पास शॉर्टेज ना हो। जब शॉर्टेज होती है मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना, आप देखें ब्यूटी स्प्रे शॉर्ट है, आप देखें लवली फेस वॉश शॉर्ट है, आप देखें हमारा हस्बैंड कंट्रोल, आज एक दुकानदार हमसे लड़ गए आपके पहाड़पुर में, हैदर मेडिकल स्टोर वाले, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया भाई, हमने ईद के ऊपर जितने लोगों को जवाब दिए हैं ना हमें बताया, हर बंदा कहता था हाजमा कंट्रोल जब ईद के ऊपर नहीं है तो फिर आप बाद में क्या करेंगे। तो इस हवाले से मैं भी अगेन आपसे माजरत चाहता हूँ,
इस ईद के ऊपर हमें कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज का सामना रहा है और वो प्रोडक्ट जो कि आपकी नीड भी थी और आपको गुस्सा भी होगा कि भाई हम लेने के लिए गए हैं और हमें मिल नहीं सका, कुछ जगहों के ऊपर शॉर्टेज रही है, ठीक है जनाब। और उसके लिए माजरत, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने ठीक ठाक क्लास लगाई आज उसामा की, ठीक है, और उससे मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर ये हुआ, मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम किसी को सैलरी देते हैं, हम किसी को तनख्वाह देते हैं, तो इस चीज की देते हैं कि भाई अपना काम पूरा किया जाए। मेरा काम अगर पूरा है, अगर मैं यहाँ से लोगों को क्या कहते हैं वक्त के ऊपर बता रहा हूँ कि भाई इस मौसम में आपको क्या लगाना चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि भाई वो उन चीजों को भी बराबर रखे, ठीक है जनाब। स्टॉक में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सामान सुन रहे होंगे तो भाई ये आपके लिए स्पेशल कि अगर इस ईद के ऊपर हमें कुछ सुनना पड़ा है तो आपकी वजह से सुनना पड़ा है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट टाइम ऐसी शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और स्पेशली ईद के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि एक हफ्ते का टाइम है भाई आपके पास और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी शॉर्टेज मुझे जो है खत्म होनी चाहिए, या फिर मुझे कह दें कि मैं प्रोग्राम बंद कर दूं ताकि लोगों को भेजे ही ना, ठीक है जनाब। अगर चीजें आपसे बराबर नहीं हो पा रही, मैं उन्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि आज वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और मैंने कह रहे आपने प्रोग्राम सुनना है ताकि आपको पता चले कि भाई हम कितनी अजियत से इस दफा गुजरे हैं और लोगों की वजह से दुकानदार हमसे कितने नाराज हैं, कस्टमर हमसे कितने नाराज हैं कि आपसे स्टॉक क्यों बराबर नहीं हो सका। तो मिसमैनेजमेंट के लिए भाई ऑन द बिहाफ उसामा जो है वो शायद वो कॉल करके आज खुद ही एक्सक्यूज कर दे शो के अंदर आकर के क्यों मिसमैनेजमेंट हुई है और क्यों शॉर्टेज हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे वादा है कि इसी हफ्ते के अंदर हम सारी शॉर्टेजेस जो चल रही हैं, ब्यूटी स्प्रे की शॉर्टेज है या लवली फेस वॉश की शॉर्टेज है या हाजमा कंट्रोल की शॉर्टेज है, ठीक है जनाब, वो बिल्कुल आपको इसी अंदर के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स एकदम फिर से बिल्कुल फुल एंड फ्लैश आपको हर प्रोडक्ट जो है इंशाल्लाह मिलेगी और आपने उसी एतमाद के साथ उसी भरोसे के साथ जो आपका भरोसा केसन के ऊपर है, जो गर्मी के स्पेशल प्रोडक्ट्स के हवाले से है। कौन से स्पेशल प्रोडक्ट है गर्मी के? लवली

जब जब शॉर्टेज होती है तो वो हर जगह नहीं होती, ठीक है जनाब। ये आपको लेट सपोज जैसे कि हसीब जनरल स्टोर है, लेकिन अगर आप हसीब को छोड़कर हैदर के पास जाएंगे तो शायद हो सकता है हैदर के पास वो चीज मौजूद हो। अब जैसे कि हाजमा कंट्रोल हैदर के पास नहीं था, रंगपुर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी दुकानों के ऊपर मौजूद था, ठीक है जनाब। जैसे कि हसीब जनरल स्टोर है वहां पर मौजूद है दुकान। कस्टमर जब आपको लगे कि भाई एक चीज एक जगह से नहीं मिल रही तो काइंडली दो तीन दुकानों के ऊपर जरूर चले जाया कीजिए, क्योंकि बाज़ुकात किसी एक दुकान के पास जो होती है क्या होती है कि जनाब वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है जनाब। कुछ दुकानों के ऊपर जैसे कि अब इश्तिहार हमारा हर रोज चल रहा है, ठीक है। अब लवली फेस वॉश आपको मिल जाएगा जनाब, आप नवीद जनरल स्टोर के ऊपर चले जाएं, आप जीशान जनरल स्टोर के ऊपर चले जाएं, आप ताजमहल के पास चले जाएं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि ये आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पर ना मिले, यानी कि हर जगह शॉर्टेज नहीं होती है, ठीक है जनाब। जब हमारे पास चीज शॉर्ट होती है तो वो कुछ दुकानों के ऊपर उन दुकानदारों के ऊपर शॉर्ट हो जाती है जहाँ पर जो क्वांटिटी में हमसे कम लेते हैं या जिनके पास डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो काइंडली जनाब थोड़ी सी आप भी थोड़ी सी हरकत में बरकत होती है, एक दुकानदार के पास जाके ना रुका करें, बल्कि दो तीन से जरूर पता कर लिया करें आपके पसंद की, जैसे कि अब लवली फेस वॉश है या ब्यूटी स्प्रे है। लेट सपोज आपको एक दुकान के ऊपर ये दोनों चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि जनाब ये समर की प्रोडक्ट है और हम कहते हैं कि भाई आपकी जो समर की रूटीन है गर्मियों में, अगर आप अपनी स्किन को फ्लॉलेस देखना चाहते हैं, फ्रेश देखना चाहते हैं, डलनेस से बचा हुआ देखना चाहते हैं, तो दो चीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक तो अच्छे से फेस वॉश का, जैसे कि केसन के आप लोगों के पास फोमिंग फेस वॉश, क्रीमी प्लस फोमिंग फेस वॉश मौजूद है, इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चेहरा धोने के बाद आपने ब्यूटी स्प्रे का इस्तेमाल करना है जो कि अर्क गुलाब, विटामिन सी और एलम पर मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको ये बोल रहा होता हूँ ना, अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि गर्मी के अंदर ही ये प्रॉब्लम होता है कि आपके मसामों के अंदर ऑयल और पसीना ठहर जाता है और फिर यहाँ पर जर्सीम बनते हैं और फिर दाना निकल आता है। ये जो हमारा ब्यूटी स्प्रे है इसके अंदर एक बहुत सी माइनर सी जो क्वांटिटी है वो फटकड़ी की है, एलम की है, जो फौरी तौर पर इंफेक्शन को खत्म करता है, जरासीम को, एंटीसेप्टिक है ना बेसिकली जो एलम होती है, फटकड़ी होती है, लेकिन ये बहुत कम मकदार होती है एज पर अवर माहरीन, जो वो समझते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि स्किन के दाग धब्बों को भी खत्म करे। तो ब्यूटी स्प्रे बहुत ही प्यारी चीज है, इसमें शॉर्ट चल रही है, लेकिन कुछ जगह पर जहां जहां है भाई खरीदिएगा जरूर। ब्यूटी स्प्रे के बाद सॉरी फेस वॉश चाहे आप लवली लगाते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि भाई आप लोगों की हर फिक्र का हल।

आपकी खूबसूरती को बिल्कुल ही संभाल रहे हैं हम अपने चार फेस वॉशेस की मदद से। हमारे पास चार किस्म के फेस वॉश है। नंबर वन जो हमारा पहला फेस वॉश है वो प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये दाग धब्बों को भी खत्म करने वाला फेस वॉश है जनाब। आपके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की लुक लाने वाला फेस वॉश है। दूसरा फेस वॉश एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एक्ने है, जिसको हम ग्रो पिंपल फेस वॉश कहते हैं। ये साबुन फेस वॉश दोनों में मौजूद है। तीसरा फेस वॉश हमारा चारकोल स्क्रब फेस वॉश है जो कि गहरी सफाई करता है, नाउ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को उखाड़ के फेंक देगा। किसम का चारकोल स्क्रब फेस वॉश, इसके अंदर आपने स्क्रब कर दिया, ठीक है। एंड चौथे नंबर के ऊपर सांवले रंग को भगाने वाला

0: पाकिस्तान
1: जी जनाब, कैसे नजर पाकिस्तान की प्रोडक्ट हर मौसम के मुताबिक जब आप हमारी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जनाब आप लोगों को बहुत सारे फायदे होने हैं। और ये चार फेस वॉश अगर कोई मुझसे कहे कि भाई गर्मी के अंदर चशे पकार दी, ठीक है जनाब, तो मैं बोलूंगा भाई केसन फेस वॉश फितरत
2: सलामुना स्टॉप पोस्ट के द पाक वाली एहसास दाद केसन नेचुरल्स रिख्ती ने व्यार दे द फितरत लजड़ स्ताख कुलात यो सौगात केसन नेचुरल्स स्ताद बावर नशे पहर चांस की ये मीना और रणा
3: केसन नेचुरल्स पाकिस्तान स्ताद तबीख कुला मलगरी।
1: जी जनाब, आप लोगों की कॉल जो है वो प्रोग्राम आते ही स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा वेट कर लिया करें जनाब, हमें भी थोड़ी सी बातें करने दिया करें ताकि आपको हमारी बातों की समझ आ सके ना। तो इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उनको वेलकम करते हैं जनाब केसन के टी टाइम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, मास्टर फतेहुल्लाह साहब हमारे साथ हैं।
4: क्या है खलील भाई, कैसे हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, खैरियत से हैं आप? ठीक है बिल्कुल,
4: अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक हुई तो धूप चली गई, लेकिन आप कल आए हैं।
1: अच्छा, कल आप नहीं थे, कल मेरे ख्याल में आप नहीं थे फिर हमारे पास।
4: नहीं नहीं, मैं हम तहसील के साथ बातें करते रहे ईद मुबारक।
1: चलो ठीक, आपने तहसील को मुबारक कह दी तो यूं समझ लें आपने केसन को भी ईद कर दी और मुझे भी ईद कर दी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जनाब?
4: बिल्कुल खैरियत है जी। आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलती काम में, आजमा का दो सीरत नहीं मिल रही। कल मैंने मुझी को फोन किया, उसने कहा अभी उसकी कीमत कम कर दी है, ना 200 वाली है ना 150 वाली है, और कुछ चीजें थी वो भी इनके साथ नहीं थी, बिल्कुल खत्म हुए हैं।
1: अच्छा, बस मैं ये मुजीब से, क्योंकि न्यू एरिया है हमारा टांग का, उन्होंने मुझे नहीं बताया, वैसे उन्होंने मुझे सिर्फ हाजमा कंट्रोल सिरप को बताया था।
4: कल मैंने फोन किया था, हाजमा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, उसने कहा पहले 200 वाले थी वो तो खत्म हो गए, अभी नए नहीं गई है अभी।
1: जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये आपको उम्मीद तो यही है कि मंगल वाले दिन इंशाल्लाह टांक में भी ये हाजमा कंट्रोल कम कीमत वाला और उससे भी बेहतर रिजल्ट के साथ आपको इंशाल्लाह ये मिलने वाला है। रेडी हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल भी रेडी हुआ पड़ा है, लेकिन आपको पता है ईद के दो दिन ये गुड्स वालों के बड़े मसले होते हैं, यकीन करें। फैक्ट्री में बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन आने का मसला है कि आज भी छुट्टी आ गई है, बीच में कल भी छुट्टी थी, अब सोमवार को माल निकलेगा तो इंशाल्लाह हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है,
4: तो ईद के मौके पर ही लोग
1: बिल्कुल, लेकिन अभी वो गोश्त चलेगा ना, अभी खत्म थोड़ी हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह गोश्त चलता रहेगा तो हाजमा कंट्रोल भी साथ साथ में चलता रहेगा। वो तकलीफ मैंने आती है, देखिए मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर की भी बहुत ज्यादा क्लास ली है, यहाँ पर तो मैंने क्लास उसकी नहीं ली इतनी, लेकिन आपको नहीं पता कि मैंने उसकी क्या की है, लेकिन यहाँ पर मैंने माजरत उनके ब्याह पर की है कि क्यों मिसमैनेजमेंट हुई है और क्यों एंड ईद के ऊपर जो चीजें स्टार्ट हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी मास्टर साहब। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, एक दफा माफी दे दे हमें।
4: अच्छा जी,
1: वेट कम करके सिर्फ हाजमा कंट्रोल का इशू था, वो ईद के ऊपर नहीं थी, लेकिन वो भी आ जाएगी। तो आपने हमारा शैम्पू भी इस्तेमाल कर लिया मास्टर साहब?
4: हाँ जी जी, शैम्पू इस्तेमाल किया।
1: शैम्पू कैसा है?
4: साबुन भी इस्तेमाल किया।
1: अच्छा, मतलब हर चीज से मुतमईन होते जा रहे हैं आप, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। आप पहले कॉलर और उसके बाद इतने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने वाले हमारे ये बंदे, बहुत शुक्रिया जनाब इनका, मास्टर फतेहुल्लाह साहब। और ये हमारा एसेट है वैसे, ये लिसनर जो हैं जो इन्होंने स्टार्ट में हमारे प्रोडक्ट खरीदी माशाल्लाह और सारी प्रोडक्ट अब वही खरीदने लगे। आप यकीन कीजिए ये आपका इलाका जो है ना टांक वालों से हम ज्यादा मुखातिब होते हैं। मेरे ख्याल में तासीर भी कहते थे भी मैं तो टांक वालों को ही मुखातिब रखता था। मैंने कहा तुम्हें हमने हायर ही इसलिए किया है कि तुमने टांक वालों को ही मुखातिब करना है। तो टांक वालों को ज्यादा हम मुखातिब इसलिए करते हैं कि न्यूली एरिया ओपन है। ठीक है, एंड इस वक्त ये एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब नजर हसन सर, क्या हाल है? ठीक है,
4: फजल है मास्टर फतेहुल्लाह के बाद मैंने कहा दूसरे मास्टर को भी टाइम दिया जाए।
1: दो तो मास्टर हैं जी, अब इनके बाद जो है हमारे अंकल असद आ जाए तो तीन का जो है ना झूठ मुकम्मल हो जाएगा। मोस्ट सीनियर पीपल इन माय शो।
4: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे हैं सर आपके लिसनर को, आपको बहुत बहुत सलाम। राजा कपूर और शब्बीर भाई को स्पेशल, वो खफा होते हैं, नाराज ना हूँ, मेरे कदरदान है।
1: अच्छा, आप ही उन नाराज लोगों में शामिल है जिनको ईद के ऊपर हाजमा कंट्रोल पीने को नहीं मिला?
4: अरे मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह से मैं क्या करता, आपका जो बंदा है, फिर आपकी इज्जत हमारी इज्जत है सर।
1: अच्छा जी,
4: कंट्रोल नहीं था, अभी जिस तरह ये दोनों मुझे बहुत पसंद है
1: ना, ये गर्मी के हैं वो तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर आपको इंशाल्लाह बराबर करके देंगे ये सारी चीजें।
4: इंशाल्लाह तकलीफ ना दे, इंशाल्लाह माजरत हो गई है, अल्लाह ताला तौफीक देगा कि जल्दी सामान अरेंज कर देगा इंशाल्लाह मेरी प्रोडक्शन।
1: हाँ इंशाल्लाह प्रोडक्शन तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है इन चीजों में, और मैनेज करना अगर एक जिम्मेदारी आपकी है ना, उस जिम्मेदारी को आप लेंगे, ठीक है जनाब, और उसकी वजह से आपके एक या सुस्ती की वजह से अगर 1,00,000 लोग मुतासर होते हैं तो कसूर तो आपका है ना।
4: बिल्कुल,
1: नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, वैसे इतनी ईदें आप लोगों के साथ हमारी गुजरी है।
4: कंपनियों में ये शॉर्टेज माल में मटेरियल में आ जाती है, चलो इंसान से खता होती है, माफ कर दें।
1: इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आमीन आमीन आमीन। और जो है फेस वॉश और ब्यूटी स्प्रे गर्मी में कितने जरूरी है जनाब?
4: बहुत अच्छी चीज है, बहुत माशाल्लाह। फिर मैं दूसरा ले आया हूँ, पता नहीं गुलाब वालों का परपोस्ट।
1: अच्छा, कोई और लेके आ गया, चलो गुजारा कर ले जब तक हमारा नहीं आता, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हमारा नंबर जो है वो सुन ले आप, नए लोगों को नहीं पता, 03449363366, 03-344-936-3366। जी जनाब, ये हमारा नंबर है, फिर से नोट कीजिएगा, अगर आप हमें हमारे शो के अंदर कॉल करना चाहते हैं, हमें मैसेज करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट कीजिएगा। दो नंबर हैं, एक जोंग का नंबर इस वक्त एक्टिव है और एक टेलनार का। टेलनार का नंबर 03449363366, ठीक है जनाब, ये, और दूसरा जो जोंग का है 03137985454, 03137985454, ठीक है जनाब, इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जिन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
0: खलील भाई।
1: जी जी, खलील बात कर रहा हूँ
0: सर, मैं बात कर रहा हूँ भोरी खान से, जिला मियावाली से।
1: जिला मियावाली से बात कर रहे हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं?
1: मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ। पहाड़पुर एफएम को सुन रहे हैं आप?
0: जी जी।
1: अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब?
0: सर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा भतीजा है कराची में, उसकी दादी के बाल नहीं है, आपके प्रोडक्ट के बाल में मैं उसको बताया तो वो बोला मेरे लेटा दिए आयल और शैम्पू, ये कौन सा शैम्पू है वहाँ से लेना है?
1: दाढ़ी के ऊपर बाल नहीं है
0: जी, जी खोदा है, खोदा।
1: अच्छा, खोदा है खोदे के ऊपर, बिल्कुल जी, ये एलोपीशिया इसको कहा जाता है, ये एलोपीशिया की बीमारी होती है, और इसमें हमारा ऑयल शैम्पू नहीं, सिर्फ ऑयल, ठीक है जी, तो केसन हेयर ऑयल हमारा मिलता है, उसे कहें कि रात को सोते वक्त आपने ये ऑयल लगा के इसको जज्ब कराना है, ठीक है, ये रहता नहीं है चेहरे के ऊपर या जहां पर भी आप लगाएंगे, इसको थोड़ी सी मालिश करेंगे ना तो ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, ठीक है जनाब, तो उसे कहें कि इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जिस तरह सर के ऊपर एलोपीशिया होता है और ये कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि बालों से महरूम होता है, वहां पर बाल आ जाते हैं, तो उन्हें कहें कि लगाएंगे इंशाल्लाह, ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा आपको, ठीक है जनाब। रंगपुर में बिल्कुल हैदर के पास मिल जाएगा, दुकानें भरी पड़ी हैं, हैदर मेडिकल स्टोर, हसीब जनरल स्टोर, जमील नियाजी, पहाड़पुर तो भाई डका डक है बिल्कुल केसन प्रोडक्ट के साथ, कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जहां पर आपको हमारे प्रोडक्ट ना मिले। केसन में, केसन के जो यूजर है पहाड़पुर में वो बहुत ज्यादा अलहमदुल्ला, ठीक है जी,
0: हाजमा कंट्रोल भी बाद में
1: मिल जाएगा, हाजमा कंट्रोल अभी शॉर्ट है लेकिन हसीब के पास आपको हाजमा कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है जी, आप शैम्पू ले लें हैदर से और हाजमा कंट्रोल सिरप जो है आप उधर हसीब से ले लें, ठीक है जी। आयल, आयल शैम्पू कहाँ लगाएंगे दाढ़ी के ऊपर, आयल लेना है, केसन हेयर ऑयल, ठीक है जी,
0: ठीक है।
1: अच्छा जी, बालों का जो है, बालों को जब हम धोते हैं ना बालों से, पानी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला है। मेरी चाय मेरे सामने आ चुकी है जनाब, और आपका भी टी टाइम है, क्या चाय पी चुके हैं आप, या पीने वाले हैं, या अभी तक पक रही है चाय आपकी, बन रही है जनाब, ऐसे चाय को बनाया जाता है या पकाया जाता है, क्या समझते हैं आप है? तो जनाब पानी जो है, ऐसा पानी जो बर्तन के अंदर सफेद तह छोड़ जाए। अगर आपके घर के अंदर ऐसा पानी है कि आप बर्तन में जब रखते हैं तो उसके बाद सफेद तह आ जाती है, या आप पानी पीते हैं तो वो नमकीन लगता है, या आप पानी पीते हैं तो वो खारा होता है, तो ये आपके बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जी आप एक और गालर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, क्या भाई शरीयत है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ, अपना प्यारा सा नाम बताएंगे मोहतरम?
5: मोहम्मद इमरान घेबी। तो
1: मोहम्मद इमरान घेबी से बात कर रहे हैं, घेबी घेबी गिरसल जबारवाल और घेबी इधर ही है या इसके आगे है कहीं पर?
5: ये ठठा बलोचा केज बंद कुरैया और अमान के दरमियान में है।
1: अच्छा जी, यानी कि मेरा अंदाजा ठीक लगा है जी, यानी कि दोहोतर अड्डा से, अगर दोहोतर अड्डा से नीचे की तरफ जाए तो हम घेबी की तरफ पहुँच जाएंगे।
5: जी
1: क्या, क्यों नाम इस इलाके का घेबी है, क्यों रखा गया घेबी? गोभी होना चाहिए था, सीधा लफ्ज है गोभी, घेबी क्यों है?
5: एक कौम मानव वो कौम घेबी है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, जिस तरह अवान वाला नाल है तो यहाँ पर सारे अवान है।
5: जी
1: ये वजह, तो वहाँ पर घेबी कौम है एक।
5: जी
1: अच्छा, चलो जी मेरे इल्म में आप इजाफा हो गया है। और ये गिरसल और जबार वाला जो है उनकी क्या कहानी है, उनको उनके बारे में जानते हैं या बस सिर्फ घेबी के बारे में आप जानते हैं?
5: उनके बारे में हमें क्या पता, हमें तो अपने गांव के बारे में इतना नहीं पता, तो दूसरे गांव में हम किस तरह कहेंगे।
1: अच्छा चलो, आप पड़ोसी है ना इन इलाकों के, तो कभी नेक्स्ट टाइम जब आपने कॉल करनी है तो भाई किसी गिरसल वाले से भी पूछ लेना है, ठीक है जनाब, और जबारे वाले से भी पूछ लेना है।
5: अच्छा ये बात आप जो अहल और शंभू के बारे में बता रहे थे,
1: हाँ हाँ,
5: तो ये एक बच्ची है पैदाइशी, उसके बाल नहीं है, जब पैदा हुई थी तो बाल थे,
1: ठीक है,
5: तो शुरू में कटा रहे थे, फिर अभी वो बाल है लेकिन बेजान है।
1: बस मेरे भाई ये तो कोई भी मसला नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं ठीक है ना, ये ऑयल और ये शैम्पू केसन का, हम कहते हैं कि बहुत सारी कंपनियों के ऑयल चलते हैं एफएम के ऊपर, लेकिन हम कहते हैं कि केसन का जो ऑयल है ना वो स्पेशलिस्ट जो स्पेशल बना हुआ ना, ये बालों के लिए बना है, ये सिर्फ बालों के लिए ही है जनाब, बहुत असर बात।
5: अच्छा जी,
1: ये सिर्फ ये जो फार्मूला है ना ये बालों का स्पेशलिस्ट फार्मूला है, इसके अंदर 17 अज्जा है और हर वो इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है जिसकी वजह से आपके बालों की सर के ऊपर कमी होती है, बाल मुर्दा होते हैं, बाल बेजान होते हैं, खुश्क होते हैं। पहले तो आपके घर का पानी कैसा है पहले मुझे ये बताएं, पानी आप नलके का इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का करते हैं, कौन सा करते हैं?
5: पहले तो ये था ना कि हैंडपंप लगे हुए थे, वो पानी साफ था। अभी गटर सिस्टम आ गया हर जगह पे, तो अभी फिल्टर का पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहाने के लिए तो कोई नलके वाला बहुत पानी।
1: ये बहुत बड़ी ज्यादती है बालों के साथ, अगर आप ऐसे पानी से नहाते हैं जो कि आर्सेनिक ज्यादा है या जिस तरह के खारा है या नमकीन है या हार्ड वाटर है, वो आपके बालों को मुर्दा करेगा, बेजान बाल होंगे। अगर आप नहाते हैं लेकिन थोड़ा सा, मेरी बात सुने, थोड़ा सा पानी आधी बाल्टी फिल्टर वाला रखें, जैसे नहा लें तो आखिरी बार जब आप नहा रहे हो ना, आखिरी दफा, जिस तरह बच्चे को पहले साबुन वगैरह से नहला दिया, साफ सुथरा कर लिया, तो आखिरी जो पानी आप डालते हैं ना वो पानी फिल्टर का डालें सर के ऊपर,
5: ठीक हो गया,
1: ठीक है। और ये ऑयल इस्तेमाल करें जी,
5: हमने इस इलाके का पानी चेक कराया ना, तो उन्होंने फिल्टर वाला भी रिजेक्ट किया है, उन्होंने हैंड पंप वाला भी रिजेक्ट किया है, लेकिन नहर वाला पानी उन्होंने कहा ये सबसे बेस्ट है।
1: वाह क्या बात है,
5: तो अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा इस्तेमाल करें, अभी फिल्टर वाला भी लगवाया
1: है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, पहले तो प्रायोरिटी के ऊपर ऑयल खरीदिए केसन का, ठीक है, और इंशाल्लाह आप एक महीना पूरा उस बच्ची को इस्तेमाल करें। हमारे पास फीमेल आई हमारे शॉप के ऊपर, यकीन करें उसने हमें अपनी बेटी की बाल दिखाए कि भाई ये देखें कमर को इसके बाल आ गए, ये जब पैदा हुई थी इसके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे और हम परेशान थे कि बच्ची है लड़की है क्या होगा इसका, फिर हमें किसी ने इस ऑयल के बारे में बताया और जब इस्तेमाल किया तो कहते हैं कि वो स्पेशल बच्ची को लेकर आए हमारे दुकान के ऊपर हमारे ऑफिस में और बाल दिखाने के लिए कि भाई ये देखें आपके ऑयल की वजह से इसकी कमर को जाके लगते हैं, कोई 5 साल की लड़की थी वो, तो आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें केसन हेयर ऑयल, ठीक है जनाब, हफ्ते में 3 से 4 दफा लगें और इंशाल्लाह आप हमें एक महीने बाद बताइए कि बालों की पोजीशन क्या है, कितने नए बाल निकल के आ गए हैं और बाल अब कितने नरम मुलायम हो गए हैं, ठीक है भाई,
5: ठीक है,
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच।

0: जनाब, गंजपन का खात्मा हो सकता है केसन के साथ, और केसन के ऑयल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन कीजिए कि आपके मुर्दा बालों के अंदर जान आएगी। सुबह मैं पहाड़पुर एफएम के ऊपर मॉर्निंग शो कर रहा था तो उसमें हम ये बता रहे थे कि स्ट्रेटनर का इस्तेमाल जो होता है, या कलर जब खजाब वगैरह आप लगाते हैं, काला पत्थर लगाते हैं, या इस तरह का नमकीन पानी या हार्ड वाटर से आप अपने बालों को धोते हैं, तो आपके जो बाल होते हैं, सबसे पहला जो नुकसान होता है, चमक खत्म हो जाती है, आपके बाल बेजान रूखे हो जाते हैं, खूबसूरत नजर नहीं आते, झाड़ू की तरह लगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भाई आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है। केसन का हेयर ऑयल रेड कलर का, ठीक है जनाब, 17 अज़ा पर बना हुआ ये ऑयल इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए कि जनाब केसन का जो हेयर ऑयल है वो आपके बालों के अंदर नई जान डालने की सलाहियत रखता है, नई जान डालने की। शबराम साहब हमारे साथ मौजूद है, केसन उन्हें वेलकम करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है, ठीक ठाक है मोहतरम? जी जी पहाड़पुर बिल्कुल।
1: अच्छा चलो
0: शॉर्टेज थी, मतलब कम तापते है जी।
1: और
0: दुकानदार है ना, वो आदा की मेरे को इतने ज्यादा लोग इतने खलील भाई का नंबर दो, खलील भाई की तस्वीर होती है, वो मेरे को दिखाओ, मतलब है कि वो बिल्कुल ही मेरे को शो नहीं करना। अक्सर मैं आ देना भाई आख दो बैठा है खलील भाई, आप बैठे होते नहीं नहीं नहीं, सबको पता है कि बात किरा हाल थी ना, तो बिल्कुल यकीन करो मैं को नींद दसन देने, और चुप करके बैठे रहा करो, तो बस अपने कस्टमर को रिठा करो कि भाई तुम्हारा कस्टमर आंदा पिए तो माशाल्लाह तुम्हारी कंपनी ने लोग कितनी मोहब्बत करें। रोज रोज विजिट तो नहीं होता, चलो इन हवाले कोई तरतीब इंशाल्लाह जरूर बढ़ा सो, ठीक
1: है। चलो मैनेजमेंट छोड़ दिया था, जो ऐसा था पहले पेश किया था आखिरी साल, ये बेहतर थोड़ा जो किया था उन्हें पहले चार साल तक मैं पैसे इस बारे चार थे हर बंदे ने उनको पता है चार पॉइंट ईद में छुट्टियां होते चार, क्योंकि लोगों ने एडवांस जो है पर जंग वजह को लोग चार थे, इन्हें पत्थर में भी बेजती खाऊंगे चार पॉइंट दिन तक ईद को दिन मैनेजमेंट की थोड़ी सेटिंग थी, ये प्रोग्राम में लग रहे हर बंदा अपने रिश्ते जाने को मिल तो इन्हें कुछ चल चार भी आपने पेश की रखे नहीं तो दूसरा कानून
0: ही कहे। हाँ नहीं असल बिल्कुल इन द स्टॉक रेडी है, ठीक है, तकरीबन कोई 10,000 का बैच सारा बिल्कुल रेडी पी है, लेकिन उस फैक्ट्री को निकलन ही कोताही था ये, ठीक है, उसका फॉलो अप नहीं दिता गया। अगर ईद को 5 दिन पहले प्रॉपर फॉलो अप दिता बन जाए तो ईद को पहले सारे को पहुंच बन जाए, लेकिन बस वो कसूर जाना है मैं सुनवा देते ना जानी जी मैनेजमेंट है जानी जिम्मेदारी है सही सुस्ती की वजह को जरा ना प्रॉपर, हालांकि प्रोडक्शन कोई मसला को नहीं, सिर्फ कन्विंस करना था मसला है कि प्रॉपर टाइम से कटा नहीं गया, ठीक है सही।
1: बाकी थोड़ा शुक्रिया अदा करूँ क्योंकि जो है ना आपका तमाम इलाके तकरीबन जो है ना चार साल जाकर सारे जो ज्यादा तार जो है ना वो ज्यादा आबादी है गरीब लोग की, तो थोड़ा शुक्रिया अदा करूँगी जो तुम हजम कंट्रोल को मजबूत जो है कम करके 20 साल के दिन रहे, तो हेलीकॉप्टर इसकी बरकत रखे लोग को जो श्रोता को बड़े खुशी तो जो है ना एक तुम यदि ऑफर होती है तो डिस्काउंट भी करता था जो यदि वेज कम्प्लीट कम हो
0: जनाब आपके बाल

आज एक छोटी सी कहानी हंस पे मामूल, और उसको आखिर तक सुनने की आपसे इल्तिजा, और साथ आखिर में उस कहानी के तनाजुर में अपनी राय देने का हम मुल्तमिस हैं कि अपनी राय देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सुनने वाले जितने भी हैं, पंजाब में हैं या दूसरे यूरोप में हैं या केपीके में हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारी आवाज़ सुनी जा रही है और सुनी जाती हो और हफ्तों इंतज़ार किया जाता हो, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतरीन से बेहतरीन मैसेज। अचानक मेरा फैसला हुआ 2-3 बजे का कि मैं आ जाऊँ, नहीं तो मेरा आज इरादा नहीं था आने का, थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैंने नहीं आना था। लेकिन फिर भी आपकी चाहतें और मोहब्बतें और अकीदतें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे पाँव की जंजीर बन जाती हैं और मुझे खींच कर यहाँ ले आती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार से नवाजते हैं, अकीदत से नवाजते हैं। तो डियर सामीन, हमेशा की तरह एक छोटी कामयाबी दूर नहीं करीब है, ये उनवान है। कामयाबी दूर नहीं करीब है, कामयाबी दूर नहीं करीब है। जो कामयाबियाँ चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि कामयाबी मुश्किल है, नामुमकिन है, बहुत तकालीफ के बाद है, और ये कभी कभी खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, नहीं जी, खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, मेहनत करने वालों को मिलती है। खुशकिस्मती भी इसमें अमल दखल है खुशकिस्मती का, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात मैं करूँगा, उसके हवाले से फिर मैं आपके सामने कुछ राज मज़ीद रखूँगा कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। तो आज उनवान है कामयाबी दूर नहीं करीब है। हमारे साथ रहिए, चंद ही लम्हों के बाद ये आगाज़ करते हैं फिर किड शो में। ये कहानी हम हमेशा की तरह बयान करते हैं, तो किड शो में अगर कोई हमें कॉल करना चाहे तो उसको नंबर मैं याद दिला दूं कि जो हमारा कांटेक्ट नंबर है

09635114588 09635114888 है ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई हमसे रابطہ करना चाहे, अगर कोई हमें मैसेज करना चाहे तो उसका भी यही तरीका है कि वो क्रिएट मैसेज में जाके RAT कैपिटल लिखकर थोड़ा सा स्पेस देकर 8583 पे, सॉरी आप अपना तो RAT कैपिटल लिखकर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, अपना नाम और मैसेज टाइप कीजिए और 8583 पे हमें सेंड कर दीजिए, हम आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तो किड शो के प्रोग्राम में हमारे साथ

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं किड शो के नाम से एक तामीरी और तख्लीकी और इल्मी और इस्लाही प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सहन में, आपके दिल और दिमाग में एक ऐसी कहानी की दस्तक हो, एक ऐसी स्टोरी की दस्तक हो, एक ऐसे शख्स की दस्तक हो और ऐसी बातों की दस्तक हो जो तुम्हारे दिल के दरवाजे खोले, तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खोले और आपको अमल पर आमादा कर दे और आपके अंदर हिम्मत और हौसला और मुस्तकिल मिजाजी पैदा कर दे और मायूसी को कोसों दूर कर दे, मायूसी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक दे। तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, एक छोटी सी कहानी कामयाबी दूर नहीं करीब है। एक सुनार जो बम्बई यानी हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ का रहने वाला था, तिजारत की गर्ज से लाहौर आया। तो ये मोतियों का कारोबार करता था, तो इसके पास बहुत ज़्यादा कीमती और नायाब मोती थे। तो जहाँ पे ये मंडी लगती थी, जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती थी, तो ये वहाँ गया और इसके पास जितने कीमती और नायाब मोती थे वो सब, मतलब बोली लगती रही और इसकी पसंद की कीमत जिस मोती की भी लगी, इसने वो मोती उस खरीदार के हवाले कर दिया। तो एक मोती जिसे शब अफरोज कहते हैं, ये बहुत नायाब और कीमती मोती था, ये बच गया। कि जहाँ पे तिजारत होती है, लेन देन होती है, तो तिजारत होती है, लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, तो वहाँ पे अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं, वहाँ पे जेकतरे भी होते हैं, वहाँ पे धोखेबाज भी होते हैं, वहाँ पे चोर भी होते हैं, तो हर किस्म के लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। तो एक ये जो बम्बई का रहने वाला एक सुनार था, इसने एक मोती उसके पास रह गया जिसे शब अफरोज कहते थे, वो रह गया और उस वो थैले में डाला और वापस कब मैं बम्बई चला जाऊँगा, बाकी तिजारत तो हो गई, हफ्तों का सफ़र करके आया था। तो इसने, यहाँ पे एक चोर था, उसको पता चला कि किसी तरीके से ये मोती मैं ले लूँ कि और मैं इसकी खरीदूँ, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। तो इस हवाले से उसने इस सुनार से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? कब मैं तो लाहौर बम्बई जा रहा हूँ। ओहो, मेरा भी वहाँ का इरादा है, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तो क्यों ना साथ इकट्ठे होके चले जाएं, तो कंपनी मिल जाएगी, साथ दोस्ती हो जाएगी, गपशप में ये सफ़र आसान कटेगा। उसने कहा ठीक है। तो ये बात तो उसके साथ हो गई और जब ये बात हुई तो वो सुनार जो था वो समझ गया कि कोई बम्बई का रहने वाला नहीं है, जहाँ इसको मौका मिलेगा ये मोती मुझसे चुरा लेगा। तो वो भांप गया, बड़ा तजर्बेकार था ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी इसी सफ़र में, और सफ़र में जो इलम है वो घर पर कहाँ होता है। हाँ जी, तो सफ़र में बहुत किताबों से कुछ बातें, बहुत सारी बातें किताबों में नहीं है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है, और किताबों में आसान लिखी होती है लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बड़ी तकलीफ देह होती है। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक दोस्त मिल गया, सफ़र का साथी मिल गया, तो इकट्ठे होके रवाना हुए। तो रास्ते में एक सराय आई, दिन आधा दिन सफ़र किया होगा, तो जब रात हुई तो रात के वक्त एक सराय में ठिकाना उन्होंने बना लिया और किराए पे एक कमरा ले लिया। तो अब ये चोर कहता है कि जैसे इस सुनार की आंख लगेगी ना, मैं उठ जाऊंगा और इसकी जेब से ये मोती निकाल के ले जाऊंगा और इसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो भी बहुत तजर्बेकार था, जैसे ये जो मतलब सो जाता ये चोर, तो वो अपने जो उसके पास चादर थी वो एक साइड पे कर लेता, जो जैकेट थी वो उतार के लटका देता, और जो मोती होता ना तो इस चोर की जेब में डाल, इस तरीके से डालता कि पता ही नहीं चलता कि वो मोती इस चोर की जेब में, जो सो रहा होता था उसकी जेब में डाल देता था, और बड़े मतलब बेफिक्र होके सो जाता था। जब ये सो जाता था तो चोर उठ जाता था, और चोर इसकी जेब में, इसकी टोपी और इसके कपड़ों में, इसके सामान में, और साथ उसकी जो जैकेट लटक रही होती थी कमरे के किसी कील पे, उसकी जेबों में तलाश करता, लेकिन कई घंटे तलाश करता, लेकिन इसे वो मोती न मिलता, मायूस होकर सो जाता, थक भी जाता, और ये हैरान था, होता था कि ये मोती कहाँ इसने रख लिया है। बहरहाल सुबह सवेरे उठ जाता, चोर के उठने से पहले ये सुनार, ये ताजर उठ जाता और बड़े सलीके और तरीके से उसकी जेब से वो मोती निकाल लेता, वो शब अफरोज, हाँ जी, वो निकाल लेता और
कपड़े जैकेट में दोबारा डाल लेता और चादर डाल लेता। सुबह नाश्ता, चोर उठता नाश्ता करते तो वो बड़े तरीके और सलीके और करीने से चोर पूछता, वो जो आपके पास कीमती मोती है शब अफरोज, जो रात को जलता है और रोशनी देता है, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी, खूबसूरत दिखता है, वो आपके पास है तो सही ना। तो उसने कहा, जेब में हाथ डाला, फौरन वो मोती निकाल कर उसको दिखाया। तो चोर बड़ा हैरान हो कि इन जेबों को तो मैं सारी रात टटोलता रहा, तलाशी करता रहा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला ये मोती। बहरहाल इस चोर ने कहा कि चलो इसका ख्याल करें। फिर सफर शुरू हुआ। दूसरे दिन भी सफर करके अगले एक सराई थी, वहाँ पे क्याम किया। तो फिर इसने नजरें, चोर दोनों सो गए, तो जैसे उस सुनार ने झूठ का बहाना करके कि मैं सो गया, चोर भी सो गया। अब दोबारा चोर उठता, वो सुनार उठता है, मोती उठा के इस चोर की जेब में डालता है और अपनी जैकेट लटका देता है और अपना कंबल साइड पे कर लेता है और सामान रख लेता है। तो फिर रात के वक्त 12-1 बजे ये उठता है, फिर चोर तलाशी करता है जैकेट की और जेब की और कपड़ों की और सामान की, लेकिन उसे फिर मोती नहीं मिलता। कई घंटे फिर उसने सर्च किया, तलाश किया, लेकिन वो मोती इसे नहीं मिला। तो अब ये इतना परेशान हुआ कि आखिर वजह क्या है कि ये मोती कहाँ पे रखता है, ये मोती कहाँ पे रखता है, मुझे तो नहीं मिल रहा, तो आके आज मैं उसे पूछूंगा। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उसे कहा कि सलाम दुआ की और बड़े अच्छे अंदाज से तरीके से पूछा कि ये फिर जब ये चोर सो जाता और ये बड़े तरीके और सलीके से ये सुनार, ये ताजर जो था, चोर की जेब से निकाल लेता था और चोर को पता ही नहीं चलता। तो चोर ने फिर हस्बे मामूल से पूछा कि नहीं, आपके पास वो कीमती हीरा तो है तो सही ना, गुम तो नहीं हुआ? कहा है, कहा रात को चमक नहीं रहा था? कि नहीं चमक रहा था, ये देखो मेरे पास है, जेब में हाथ डाला और मोती नहीं। ये फिर हैरान हो गई, इसकी हैरत और बढ़ गई कि ये कैसे मुमकिन है कि सारी रात मैं तलाश करता हूँ, हर एक ये कहाँ पे छुपा के रखता है। बहरहाल तीसरा दिन फिर रात हुई, दिन गुजारा सफर में, रात हुई और रात के बाद फिर रात को ये जो ताजर था, सुनार था, इसने बड़े सलीके के साथ वो मोती, चोर तो सो गया था कि जैसे सवेरे सोऊंगा तो सवेरे जागूंगा और इसकी जेब में तलाशी करूंगा, तो इसने वो मोती उठा के बड़े तरीके के साथ उसकी चोर की जेब में डाल दिया। और जब चोर की जेब में डाल दिया, खुद अपनी जैकेट वहाँ पे की था वहाँ पे लटका दी जैकेट, और अपनी चादर से सेट पे रख दी, सामान सेट पे रख दिया और बड़ा बेफिक्र होके सो गया। अब ये फिर रात को तलाश करता है, लेकिन तीसरी रात को भी इसको कोई चीज़ नहीं मिल सकी। तो जब सुबह हुई तो उसे फिर कहा कि बड़ा थका हुआ था, ने कहा इतना लंबा सफ़र और इतना खर्चा किया खाने पीने का और कमरे का, आखिर मुझे वो मोती मिलता क्यों नहीं है। तो आखिर जब इसने सफ़र आखिरी तीन रातों में उसे नहीं मिल सका, तो उसने चौथे दिन की सुबह को जब नाश्ते पर बैठे तो उसे कहा कि भाई साहब, वो मोती तो आपके पास है। उसने कहा, हाँ देखो जेब, क्योंकि उसने नजरें बचाकर फिर उसकी जेब से निकाल लिया था और अपनी जेब में डाल लिया था, क्योंकि चोर सो रहा हो तो सारी रात तलाश करता, फिर सुबह सो जाता और ये बड़े सलीके से उसकी जेब से निकाल लेता। तो तीन रातें ये बड़े सलीके के साथ चोर की जेब में डालता और खुद सो जाता, सुबह सवेरे फिर उसकी जेब से निकालता। तीन दिन और तीन रातें इसने ऐसा किया, दिन के बाद इसके पास और रात के वक्त उसकी जेब में डाल देता था। तो जब उसने कहा, मैं मान गया हूँ कि तू बहुत बड़ा ताजर भी है और बड़ा माहिर भी है और बड़ा गुरु भी है, मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि रात को ये मोती आप कहाँ रखते थे? मैं सारी रात, मैं आपका हम सफ़र नहीं हूँ, मैं बम्बई का रहने वाला नहीं, मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये अब मोती रखते कहाँ थे? तो उसने बताया कि मोती तो मेरे पास, आप किधर रखते थे? आपकी जेब में तो, आपकी जैकेट में और आपकी सामान में तो नहीं होता था। उसने कहा कि ये जो मोती था ना, मैं आपकी जेब में रख लेता था, मुझे पता था कि आप इसी मोती की खातिर मेरे पास आए हैं और इसको चोरी करके आप ले जाएंगे, तो आपको मैंने मौका नहीं दिया। अगर आप शेर हैं तो मैं सवा शेर हूँ, तो अगर आप चोर हैं तो मैं भी तजर्बा रखता हूँ, ऐसे कई लोग मुझे मिले और मुझसे चोरी करके ले गए, अब तो मैं तजर्बेकार हूँ, वो सोचो शेर समय। बहरहाल तो उसने कहा कि बस जी, मैं माजरत खा हूँ, मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। और उसने कहा कि बस ठीक है। तो सुनार मियाँ, और सुनार ने कहा, मियाँ तुम औरों की जेबों में तलाश करते हो, हाँ सामान और मोती टटोलते रहे, कभी अपनी जेब में भी नज़र डाल देते,
कि वो मूछी तुम्हारी जेब में ही मैं डाले। तो बड़ा हैरान हुआ और हैरत की इंतहा न रही कि वो जिसकी तलाश मैं जगह जगह कर रहा था, जैकेट में, जेबों में, कपड़े में, सामान में, हाँ जी पत्थरों के नीचे, तकिए के नीचे, वो मोती मेरी जेब में 3 रातों तक पड़ा रहा और मुझे एहसास तक न हुआ। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ी तकलीफ और बड़ी हैरान हुई। हमारा भी ये हाल है डियर सामईन और डियर नाज़रीन, हमारा भी ये हाल है कि हकीकत में कामयाबी बाहर नहीं, कामयाबी अंदर होती है। जैसे मैंने कहा कि कामयाबी दूर नहीं, कामयाबी करीब है। अब कामयाबी ये दूर तलाश कर रहा था, हालांकि कामयाबी इसकी जेब में थी। ये मोती दूर तलाश कर रहा था, हालांकि मोती इसकी जेब में था ना मोती। अब ये बाहर तलाश कर रहा था और वो मोती इसकी जेब के अंदर था। देखो डेर सामईन और डेर नाज़रीन, हमारी मिसाल ऐसे, मतलब कामयाबी दूर नहीं करीब है, कामयाबी बाहर नहीं अंदर है। और जिस दिन इंसान ने खुद को पहचाना, मन अरफ नफ्स फकद अरफ रब्बा, खुद की पहचान से रब की पहचान है। जिसने अपने ऊपर नज़र डाली और खुद को पहचाना और खुद की पहचान से रब की शिनाख्त होती है, तो डेर समय और खुद की सलाहियतों को पहचाना, कामयाबी आपके दाएं बाएं होती है। लेकिन इंसान की समझ और अकल पर इतना पर्दा पड़ जाता है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता और अपनी शिनाख्त खो देता है और बुराई में पड़ जाता है, मायूसी में पड़ जाता है। डेर समय कामयाबी पहाड़ के उस पार नहीं, बल्कि हमारे अज़म, मेहनत और मुनासिब मनसूबा बंदी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी होती है। जो अपनी सोच बदलता है, जो अपने रास्ते बदलता है, जो अपने ख्यालात बदलता है और एक प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत और एक मुनासिब रहनुमाई लेकर माहिरीन से और खुद की पहचान करके, रास्तों की रुकावटों को पहचान करके आगे बढ़ता है, तो कामयाबियाँ उसका मुकद्दर बनती हैं। मुख्तसर ये कि कामयाबी के लिए न दूर जाने की ज़रूरत नहीं और न ही किसी जादू की छड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, मेहनत, काम और किफ़ायत शियारी से, लगन से, शौक से, इश्क से, प्यार से, अकीदत से काम करते रहना, जज्बे से, सब्र से, तवक्कुल से और कामिल यकीन ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए। तो डियर सामईन और डियर नाज़रीन, ये सारी बातें इस वजह से थी कि किसी भी तरीके से हमें कामयाबी मिल जाए। सब्र के अंदर कामयाबी है, तवक्कुल के अंदर कामयाबी है, मुस्तकिल मिजाजी के अंदर कामयाबी है, हाँ जी बर्दाश्त के अंदर कामयाबी है, लोगों को माफ़ करने के अंदर कामयाबी है, हाँ जी ईमानदारी के अंदर है, दयानतदारी के अंदर है, इंसाफ के अंदर है, जुल्म न करने के अंदर भी कामयाबी है। तो हम कामयाबी गालिबन जुल्म में तलाश करते हैं, वो तो इंसाफ में है। हम झूठ में कामयाबी तलाश करते हैं, हालांकि कामयाबी तो सच में होती है। हम काम चोरी में कामयाबी तलाश करते हैं, लेकिन हाँ कि कामयाबी तो किस में है, कामयाबी तो मेहनत में है। कामयाबी तो हम बेसब्री में तलाश करते हैं, वो सब्र में है। हम इंतकाम लेकर कामयाबी चाहते हैं और कामयाबी जो है वो माफ़ी में है। तो डियर सामईन और डियर नाज़रीन, कामयाबी के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। ये पहाड़ों के उस पार नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। कामयाबियां और सुरखरुइयां और आगे पीछे शोहरत और इज़्ज़त और एहतराम, ये एक दो दिनों में नहीं मिला करता, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी लग जाती है। इसके लिए किरदार की ज़रूरत होती है, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत पड़ती है। तो डियर सामईन और डियर नाज़रीन, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो इसे पा कर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, बोल दे इस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। हमारे साथ रहिए।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: योर म्यूजिक, योर रिक्वेस्ट,
3: दिस इज रेडियो स्टेशन Radio Aman.
0: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. The Vikhtano Kulakri Yopadwa.